इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हन। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार, असी कूड़ियार, जो भी बचन करदे आ उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार भुलन हार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते तां जपन वालियां दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई चंगा कर्म नहीं, कुड़ियार असी कुड़ियार हां, क्योंकि नाम ना पा

धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म छगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल क्रिया छगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली मैं कुछ कीता भी सही ता रिद्धियां सिद्धियां नू प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड़ी कर ली तन गुरु नानक पातशाह संसार नू तार दे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिले कटे तपस्या कीती रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे दाल पानी बंद कीती बैठे जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा तन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन पापी नू मारिया नहीं पापी नू तार देना जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया आप भी पत्थर हो चुका सी धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया जा मरदानिया पानी लैके आ मरदाना एक वेरी गया दूजी वेरी गया तीजी वेरी गया बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है ता आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे कुछ अकल कर ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना मर्दानिया आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया उचारण करो श्री वाहेगुरु हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी सारा दा सारा तले आ गया उपर जल सुक गया गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं मैं की कर सकदा हां आ मैं हुणे दसदा हां अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख जलाल विच रहो करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहंदे हन ना उना दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा एडा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडा दे बादे जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली हो सकदा है ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे आप खुदा आया होवे मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे मन नीवा हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਬਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

इस चौपाई दे विच अपनी नहीं सारे संसार की सुख मंगते हैं। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। चौपाई की शुरुआत हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। गुरु नानक नाम लेवा दुनिया दे किसी कोने भी बैठे हो, जद भी पंजा बाणिया का उपाठ करते हैं तो चौपाई साहब का पाठ भी जरूर करते हैं। औखे वेले भी कोई भीड़ बने तो संगत बड़े प्यार दे नाल चौपाई साहब का पाठ कर दिया है, क्योंकि गुरसिख के मन की जिथे ये लालसा आती है पाठ करने की,

अपनी पोती दे नाल रात दे हनेरे विच बरसात विच तुरिया जा रहा। जंगल खत्म होया, कुछ पठान बैठे नजर आए, अग बल रही है। ए दादा ते पोती उन्हां पठाणा नूं कहण लगे, रब तुहाडा भला करे, साडे कपड़े गिले हन, कुछ समा अग सेक लैण दिओ। उन्हां पठाणा ने इस बाबे नूं देखिया जिहड़ा अखां तों अन्ना है, मन विच बुरा ख्याल आया, ए बाबा की साड़ा बिगाड़ सकदा है। ए सोच के उस लड़की नूं अपनी कैद विच पाया, पर वो लड़की किसे तरह कैद विचों भज निकली अपने बाबे दे नाल। फिर पठाना ने घेरा पाया, इन्हां नूं मारन लगे। इस बच्ची ने हाथ जोड़ के कलगियां वाले पातशाह दे चरणां विच अरदास कीती, हमरी करो हाथ दी रक्षा। अरदास कीती, तोड़ उड़ दी नजर आई, उसे तोड़ विचों शां शां दी आवाज करदा एक तीर आया। उस पठान दे लगा जिहड़ा बाबे नूं मारन लगा सी। देखदिया देखदिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां समेत आ पहुंचे हैं। उन्हां दोनां दी रक्षा कीती। उस बाबे ने उस बच्ची ने सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिया। इस बच्ची का रोना देख के साहब जी कहन लगे, बेटा रो ना, जद भी कोई प्यार ना गुरु का ओट आसरा लैंदा है, ते गुरु हर वेले उन्हां दी रखिया करदा है। तां ते आओ पाई आपां वी होर आसरे छड़ के

उपमा महा कलगी धर पाशा केंद्र ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी, एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वटे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब अपने

तुम्हारे दिए आए हैं। तेरे बगैर साड़ी सुरत किन्ने लैनी, कृपा कर किवाड़ खोल ते सानू दर्शन दे।

ज्यों त्यों प्रभाव को समझायो इम कह के लोक पठायो। मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नी संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रवांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इथे आराम कीता, इथों ए बेबान तुरे आ किथे जा पहुंचे आ। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडलां वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने। आत्मक मंडलां वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुर पित पूरे

हेमकुंड पर्वत जिथे आज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणां दे विच, जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकदा कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

कोई छे कर्म सत्सत कर्म साधु ही साधु खलोते है, पिछे पिछे सेवक है साधु अगे अगे है। ते बाबा जी का जिहड़ा भवान है वह उन्हां दा चुकिया होया है। जिस वेले वह समय याद आता उस वेले ए लगता है भी किन्नी धरती हरियाबली है, से संत पे हरियाबले जिन्ना मेरा सतगुरु देखा जाए। अखा उन्होंने दे विच भी जल जिहड़ा सी वह वगदा सी। भागां वाले उस वेले संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज उन्होंने कहा भी कहना तो सौखा भाई रोवो ना, ये तो अपने घर चलिया पर रोन बंद नहीं हुंदा, मैं की करा। किसी का भी उस वेले जिहड़ा सी मन ये नहीं सी कहिंदा भी मैं ना रोवा, जी करदा सी उची उची भुवां मारा। किहो जिहा प्यार दा समां सी, ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन

0: सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरा कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब जू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कट कट महला पहला
0: वड्डी उड़ेगा वड्डा।

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला बिस्मार नाथ बिस्मार वेद बिस्मार जी बिस्मार पे बिस्मार रू बिस्मार रंग बिस्मार लागे फिरे जन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खीरे बनाने बिस्मार तरती बिस्मार खाने बिस्मार साधके प्राण
1: बिस्मार श्लोक बिस्मार विलोक बिस्मार भूख बिस्मार पो बिस्मार शिफ्ट बिस्मार सला बिस्मार औदल बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार देख हादरा दूर देख बड़ान रिया बिस्मार नानक बुद्धन पूरे
2: महला पहला कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत।